ऐसी सहमकी शांति उदिशा में उतुम पिरित सज्जायने कुट बताले पाणतुर गंगुल श्री परम विशुद्धारामाधिपति वैडसेट अपत्वि बताल प्रवचन कीर्ति श्री सरबन्य विशारद पूज्यपाद मिगस्वे सोमरतन स्वामी महासेविसिनी।